सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, पर मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों अभी आपने सुना फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम और थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद फेवरेट कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री के साथ साथ सुनते हैं ये पहली फरमाइश और कार्यक्रम का पहला गाना।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
4: हेलो हेलो
5: जी, नाम बताएं।
4: युवराज।
5: युवराज जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
4: मऊ कला।
5: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
4: तेरा नाम नशा रखा।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
0: जी मेरा नाम सोहेल सेठी।
1: सोहेल सेठी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मंगापुर सिटी राजू कॉलोनी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जी आप गाना सुनना चाहते हैं, मेरे सामने वाले खिड़की में एक गाना सुन रहा रहता है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।
1: नमस्कार जी।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
2: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: सारे जहां के सामने इकरार कर लिया।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग।
1: धन्यवाद सर।

0: जी नाम बताएं।
1: आरबी गुजर।
0: आरबी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मोतीपुरा।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाड़ी पाछे गाड़ी राखे से।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश करता हूँ।

0: सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस। हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: तेजस्वी सिंह।
0: तेजस्वी सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: सुरनापुर सिटी।
0: बताएं तेजस्वी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: मजबूर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।

89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: सनाज।
0: सनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मलगापुर सिटी पंजी कॉलोनी।
0: बताएं सनाज जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो से आज?
1: कल मेरा गाना है रूट कर हम उन्हें भूल जाने लगे।
0: रूट कर हम उन्हें भूल जाने लगे
1: जी।
0: बिल्कुल सुना रहे सनाज जी आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएसएम खुल।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।

0: TVS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेरा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111, इसके अलावा 9462744762।
4: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302।
5: जी नाम बताएं।
6: अभिषेक मीना।
5: अभिषेक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
6: कर्मचारी कॉलोनी।
5: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
6: नैना की तलवार।
5: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से।

0: हेलो
1: सर, राधे राधे।
0: राधे राधे जी, नाम बताएं आपका।
1: समता जादव बोल रही हूँ सर, वाड़कला से।
0: समता जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आज?
1: मुझको सर वो सुना दो, बड़े घर की बेटी का टाइटल सॉन्ग, बड़े घर की बेटी के नखरे बड़े।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं समता जी, आपकी फरमाइश है।

0: सर जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ आवेदी से।
0: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: ये सौदागर फिल्म का टाइटल सॉन्ग है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: जी नाम बताइए सर। सचिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: यार की छोरी क्या यार।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं
0: सर। मेरा नाम विक्रम
1: है जी।
0: विक्रम,
1: विक्रम जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: बड़ी देर से बजा रहा है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: हेलो, ये नाम बताएं सर।
1: मोहम्मद शादाब खान।
0: शादाब खान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद।
0: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद से। बताएं खान साहब, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: रूट कर हम उन्हें भूल जाने लगे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन। रेडियो डिस्को।

0: हेलो,
1: नाम बताएं।
0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते, नाम बताएं।
0: सर मोनिका मीना गंगापुर सिटी से।
1: मोनिका मीना जी गंगापुर सिटी से, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
0: हेलो सर,
1: मोनिका जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर बुकअप सॉन्ग।
1: कौन सा?
0: बुकअप तू कर लेना, ये वाला सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश के तहत।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 11 बज चुके, इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं सर।
3: अभिषेक लोधा।
2: अभिषेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर सिटी लोधा कॉलोनी।
2: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: दो भैया की थर्डी चोट।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: हेलो सर, आप ले लो मैं।
1: जी नाम बताएं आपका।
0: अमित सैनी।
1: अमित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ये गंगा कैसे।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: नाम बताएं आपका?
1: पलक।
0: पलक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर चेती।
0: बताएं पलक जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: तीसरा सॉन्ग।
0: तीसरा सॉन्ग सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: हेलो
1: अपने गंगापुर रेडियो स्टेशन गंगापुर राजस्थान जी।
0: यस सर, नाम बताएं आपका।
1: अमीना सर जी, प्यार सत्कार पर सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल, कैसे हैं आप?
1: ठीक ठाक जी। सर जी नाम भी बताता हूँ जी, पहले तो जी आज सावन का महीना है जी, तो सावन के महीने के पवित्र दियां लख लख बधाइयां जी सारे आपके परिवार नूं जी।
0: आपको भी आपके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: हाँ सर जी, पहले मैं परिचय देता हूँ जी। मैं पिंड मौड़खुर्द डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से जगदीश मट्टू बोल रहे हैं सर जी।
0: जगदीश मट्टू जी, पहले बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: हाँ सर जी, फिल्म है आया सावन झूमके टाइटल सॉन्ग सुना दो जी। आया सावन झूमके
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।
1: ठीक है सर, श्रीकाल सर जी, सत श्रीकाल।

0: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर।
0: सर मेरा नाम है सोहेल सेफी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: राजीव कॉलोनी से सर।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर आज गाना सुनना चाहते हैं मेरे दोस्त की फरमाइश है, अय्यूब सलमानी की। हैरान हूँ मैं आपकी जुल्फों को देखकर।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।
2: हेलो।

0: साल से बात कर रहे हैं।
1: राजीव कॉलोनी से सर।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर आज गाना सुनना चाहते हैं मेरे दोस्त की फरमाइश है अय्यूब सलमानी की।
2: हेलो जी नाम आपकी फरमाइश। हेलो
3: हेलो
2: जी नाम बताएं सर।
3: नाम बाबू खान है।
2: बाबू जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: गंगापुर सिटी।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
3: लागी छूटे ना अब तो सनम।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आप, आपकी फरमाइश पे।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर जी।
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या नाम है सर आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी।
0: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी जी, बताएं सर आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज फिल्म शादी गाना मुझे चिरस्थायी ही फिल्म का गाना है, दिल से दिल मिलने का कोई कारण होगा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ही गाना।
1: ओके सर, थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: शिवम मीणा।
1: क्या नाम है?
0: शिवम मीणा।
1: शिवम मीणा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: यहाँ देखी से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: हुसैन इलाही।

0: रवि सैनी।
1: रवि जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: कॉलेज वाली स्टोरी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का हिस्सा।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
4: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: वालेकुम सर।
1: वालेकुम सलाम, नाम बताएं सर आपका।
0: जी नाम है तालिब खान।
1: तालिब जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी लोको कॉलोनी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गाना हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह। सर मेरे पास सुनो।
1: जी बताएं
2: सर। वालिया ने भी ब्याह ले जाएंगे।

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: योगेश जांगरे।
0: योगेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सतीश में।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: डांस पे चांस मारने रब ने बना दी जोड़ी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा।

0: पैतानी बातों रब दी सौ सच्चा लव
1: मुझे आप में रब दिखा तो मुझे आपसे प्यार हो आपको किसी और में रब दिखा आपको उससे प्यार होगा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, आर यू रेडी?
4: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक, एक विद्यार्थी 98% से अधिक, 7 विद्यार्थी 97% से अधिक, 28 विद्यार्थी 96% से अधिक, 53 विद्यार्थी 95% से अधिक, 76 विद्यार्थी 90% से अधिक, 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
5: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
6: तो वक्त हो चुका है 11:48 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर
0: जी। नमस्कार नमस्कार।
1: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप
0: जी? मैं राजू यादव, ग्राम प्रेका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आदरणीय आरजे ऋषि मीणा जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम नमस्कार।
1: नमस्कार राजू यादव जी, जब भी आपका कॉल आता है एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। एक पंजाब वालों का कॉल आता है बताए कौन सा गाना सुनना चाहिए।
0: किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना कोई साधारण बात नहीं है।
1: बिल्कुल
0: जी, गीत तो सर जी अब उसका सुना जी, मुकदमा मूवी का, रंग बिरंगी चूड़ियां तेरे दिल को चुरा लेंगे।
1: क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना है, सुना रहे हम आपकी फरमाइश पर। ये बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएक्स पर आपने कौन क्या बताया
0: जी? दो लाइन कह दें।
1: बिल्कुल,
0: हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लौटाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत
0: कोई फूल है आज हमारे दामन में, पर आपके आने पर पलकें बिछाते हैं।
1: क्या बात है सर, बहुत ही खूब सर आपने अर्ज किया है और सुना रहे हम आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद
0: जी, नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो जी सर
0: जी, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम मेरा नाम सत्यनारायण है।
0: सत्यनारायण जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे करौली फाटक गंगापुर सीट।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: वो है ना डिग्गी जी की यात्रा का।
2: श्रवण भादवा में डिग्गी के मायने कल्याण महाराज को मेड़ो लाग तो दूर दूर का नर नारी दर्शन ताई आता। एक बलंबरदार अपनी गोरी ने कहने लाग गया, गोरी डिग्गी का मेला में छल बताई तैयार हो जा कियो। हा प्रोग्राम देव सीरीज द्वारा पेश करूं आप लोगों के सामने।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: सौरभ कैमा।
1: सौरभ कैमा जी, कैमा गांव से बात कर रहे हैं मतलब आप?
0: हाँ
1: बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मुझे गाना

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: सेवा गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: आशिक बन रहे हैं।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश पर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: 89.6 पे रेडियो DS, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
4: शहर का नया मैजिक। रेडियो DS 89.6।
5: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
4: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस।

0: हूँ।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताए। बोलकर जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आपसे?
1: चूड़ियाँ बनती हैं दुकानों में।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं गुलशन जी आपकी।

0: नाम बताए सर?
1: प्रिंस मीना।
0: प्रिंस जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: पागल।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का एक गाना।
2: हो जावे तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला लफ्ज़ हो जावे।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या आपका?
0: देवेंद्र
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बोले बाबा कलम टूटी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना। हेलो,
2: मेरा रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया। तेरा मेरा अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता।

0: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
1: सचिन,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मूवी का नाम है हार हिंदुस्तानी
0: और गाना
1: परदेशी परदेशी गाना है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। हेलो,

0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सरफुद्दीन।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी सुनिए।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: दिल मेरा तोड़ दिया उसने, प्यार करें ना करें।
0: ओके सर, सुना।

0: हाय, मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नाम मेरा दिलकुश सैनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन से गाना सुनना चाहोगी?
0: पालम ले आयो काली थार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।

से रेडियो डीएस यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक।

दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरवाइस कार्यक्रम 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी के तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना और दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों दोपहर का एक बजने वाला है, थोड़ी देर में लेकर हाजिर होऊंगा आपका मन पसंद और फेवरेट कार्यक्रम नए तराने, जिसमें करेंगे छोटी छोटी बातें और साथ सुनेंगे प्यारे प्यारे नए गाने।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6।
1: राजस्थान एक ऐसी जगह है जिसके हर हिस्से में कोई ना कोई कहानी या राज दफन है, और आज की कहानी भी राजस्थान के एक ऐसे ही रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहां से शुरू होती है और कहां खत्म होती है किसी को नहीं पता। आज की कहानी है भानगढ़ की, जिसको लेकर तमाम किस्से और कहानियां हैं। और जब भी भारत की सबसे भूतिया और श्रापित जगह का जिक्र होता है तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले में तीन तरफ से अरावली की पहाड़ियों के बीच में एक किला बना हुआ है जिसका नाम है भानगढ़। भानगढ़ के किले को साल 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था। जब ये किला बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, और उस वक्त भानगढ़ में 9000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। मगर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक हंसता खेलता शहर खंडहर में बदल गया, और आज लोगों के बीच भानगढ़ के लिए इतना खौफ है कि लोग वहां दिन में भी जाने से कतराते हैं। बकायदा भारतीय पुरातत्व विभाग, जो कि इसके रखरखाव का काम करती है, भारतीय पुरातत्व विभाग एक बोर्ड पर यह साफ लिखवाया है कि सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद किसी भी इंसान का इस किले में जाना सख्त मना है। यानी कि आप दिन के उजाले में भानगढ़ के किले में जा सकते हैं, पर अंधेरा होने से पहले ही आपको वहां से बाहर आना होगा। इस किले के खंडहर भूतिया होने के पीछे की वजह वैसे तो आज भी किसी को साफ साफ नहीं पता, मगर इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उन कहानियों में दो ऐसी कहानी है जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं और सुनते सुनाते हैं। इनमें से पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब आमेर के राजा भगवंत दास भानगढ़ के किले को बनवा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर गुरु बालूनाथ नामक एक तपस्वी रहते थे। जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ पर एक भव्य किला बनवा रहे हैं तो उन्होंने राजा भगवंत दास के पास एक पैगाम भिजवाया और उन्हें अपने पास बुलवाया। जब राजा भगवंत दास गुरु बालूनाथ के पास पहुंचे तो उन्होंने राजा से कहा, आप इस किले को बनवा रहे हैं उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर एक बात का ध्यान रखना कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन के किसी भी वक्त जहां मैं तपस्या करता हूं वहां तक पहुंचे और मुझे छुए। उन दिनों जितने भी साधु संत और महात्मा हुआ करते थे सभी बहुत सिद्ध हुआ करते थे, और सभी का बहुत आदर किया जाता था। उनकी कही किसी भी बात को हल्के में नहीं लिया जाता था। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात को सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया और भानगढ़ किले के किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखवाई कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच सके। गुरु बालूनाथ के इस बात का ख्याल अगली दो पीढ़ियों तक रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने भानगढ़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और गुरु बालूनाथ की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानगढ़ के किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भानगढ़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उसी वक्त उन्होंने भानगढ़ को श्राप दिया कि भानगढ़ तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ के इसी श्राप के बाद भानगढ़ पर मुसीबत टूटी और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि 1783 में जो चालीसा अकाल आया था जिसमें मरने वालों का आंकड़ा करोड़ों में था, वो अकाल गुरु बालूनाथ के शाप की वजह से ही आया था, जिसने भानगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहां बसने की कोशिश नहीं की। कई लोगों ने भानगढ़ में बसना चाहा और कई लोगों ने वहां नए मकान बनाने की कोशिश भी की, मगर कहते हैं कि जो भी वहां मकान बनाता है उसकी छत कभी नहीं टिकती और हमेशा गिर जाती है। लोगों का मानना है कि ये सब शापित होने की वजह से ही होता है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: वो कहानी एक राजकुमारी से जुड़ी है। कहते हैं कि एक वक्त जब भानगढ़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था, तब इस किले के महल में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बेहद ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। आए दिन बड़े बड़े राजाओं की शादी के न्योते आते रहते थे,
2: मगर इन राज्यों के अलावा एक और शख्स जो राजकुमारी रत्नावती का दीवाना था, उसका नाम था सिंधिया। सिंधिया एक तांत्रिक था और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा, तभी से वो उसके ऊपर बुरी तरह फिदा हो गया था। अब वो किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था, मगर उसे पता था कि वो सीधे तरीके से कभी भी राजकुमारी को नहीं पा सकता, क्योंकि कहां और संसार में रहने वाला एक तांत्रिक और कहां महलों में रहने वाली राजकुमारी। इसलिए उसने राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ निकाला और अब बस सही मौके की फिराक में लग गया। एक दिन आखिरकार उसे ये मौका मिल ही गया। उस दिन राजकुमारी रत्नावती की एक दासी भानगढ़ के बाजार में आई। दरअसल वो राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी। तांत्रिक सिंधिया किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। जब वो दासी तेल खरीद कर वापिस जाने लगी तो तांत्रिक सिंधिया ने उसे किसी बहाने से रोक लिया। क्योंकि वो तंत्र मंत्र में माहिर था, उसने दासी द्वारा लाई गई तेल की बोतल पर चुपके से काला जादू कर दिया। जब दासी राजकुमारी रत्नावती के पास पहुंची और तेल दिया, तो राजकुमारी को कुछ शक हुआ। रत्नावती बहुत ही समझदार थी, इसलिए तेल को देखकर उन्हें पता चल गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है। जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा तो दासी ने तांत्रिक सिंधिया के बारे में बताया। सिंधिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को पूरा माजरा समझ में आ गया और उन्होंने वो तेल की बोतल एक पत्थर पर दे मारी। इस वजह से तेल और उसका सारा जादू उस पत्थर में समा गया। अब वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंधिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक ने देखा कि एक बड़ा पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे सारी बात समझने में देर नहीं लगी। मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। चूंकि वो पत्थर बहुत बड़ा था, अब तांत्रिक का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि कुंवारी रत्नावती सहित भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं ताउम्र भानगढ़ के किले में भटकती रहेंगी। तांत्रिक सिंधिया मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ समय बाद भानगढ़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। इस लड़ाई में अजबगढ़ की सेना पूरे भानगढ़ में कत्लेआम मचा गई, जिसमें रानी रत्नावती सहित कई लोग मारे गए। हालांकि इतिहास में कहीं भी भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध का जिक्र नहीं है, पर सदियों से यही कहानी सुनी और सुनाई जा रही है। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद भानगढ़ का किला कभी आबाद नहीं हो पाया और धीरे धीरे भानगढ़ वीरान बन गया। आज भूतों का गढ़ बन चुका है। युद्ध में मारे गए सभी लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में मौजूद हैं। भानगढ़ में आज भी रात को बाजार सजता है, खंडहर फिर से खड़े हो जाते हैं और अंदर राजा का दरबार लगता है। वहां के लोग बताते हैं कि उन्हें रात को चीखने की आवाज आती है, कभी हंसने की आवाज आती है, तो कभी घरों के बजने की आवाज सुनाई देती है। भानगढ़ के किले में आज तक जो भी रात में गया, वो फिर कभी जिंदा लौट कर नहीं आया, और अगर कोई जिंदा वापस आया तो उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है या फिर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा कहा जाता है कि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध के समय बहुत सारा खजाना भानगढ़ के किले में छिपाया गया था। बाद में उसे निकालने के लिए फैलाई गई अफवाह थी कि भानगढ़ में आत्माओं का वास है। चूंकि भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए युद्ध का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इसलिए खजाने की सच्चाई पर शक किया जाता है। हर किले का शुरू से लेकर अंत तक अपना इतिहास होता है। भानगढ़ का किला कैसे और किसने बनवाया, इसका इतिहास है, मगर ये तबाह कैसे हुआ, इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं है। यही चीज भानगढ़ के किले को और रहस्यमय बनाती है। दिन में भानगढ़ घूमने गए कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा हो या कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। भानगढ़ की नृत्यों की हवेली में घरों के बजने की आवाज आती है या किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई उनका गला घूट रहा हो। इन खबरों के बाद कई बड़े न्यूज चैनल और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम रात में जाकर भानगढ़ की पड़ताल कर चुके हैं।

राजस्थान की तपती हुई धरती पर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जिसकी दीवारों में सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि सदियों की वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की गूंज आज भी सुनाई देती है। यह है चित्तौड़गढ़ का किला, राजपूताना की आन बाण और शान का प्रतीक। यह किला सिर्फ एक दुर्ग नहीं था बल्कि राजपूत आत्मसम्मान का गढ़ था। यहां तलवारें टूट सकती थी लेकिन इरादे नहीं। यहां हार का मतलब सिर्फ युद्ध हारना नहीं था बल्कि सम्मान खो देना था। इसलिए इस किले की दीवारों ने कई बार ऐसी घटनाएं देखी जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित यह किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। लगभग 700 एकड़ में फैला यह दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। किले तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है और रास्ते में 7 विशाल दरवाजे पार करने पड़ते हैं। इन दरवाजों को इस तरह बनाया गया था कि दुश्मन की सेना सीधे अंदर प्रवेश न कर सके। हर दरवाजे के पीछे एक नई रक्षा पंक्ति थी, एक नई चुनौती थी। किले के भीतर प्रवेश करते ही एक अलग ही संसार दिखाई देता था। विशाल महल, प्राचीन मंदिर, जलाशय और चौकियां, सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि यहां लंबे समय तक घेराबंदी झेली जा सके। किले के अंदर दर्जनों कुएं और तालाब थे जिनमें वर्षा का पानी जमा किया जाता था। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजती थीं। सैनिक अपने अस्त्र शस्त्रों को तैयार करते थे और महल के आंगनों में राजसी जीवन की हलचल दिखाई देती थी। ये किला सिर्फ युद्ध का केंद्र नहीं बल्कि एक जीवंत नगर था जहां संस्कृति, धर्म और वीरता एक साथ सांस लेते थे। ये किला सदियों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। यहां से कई महान राजपूत योद्धाओं ने अपने साहस और रणनीति से इतिहास रचा। लेकिन इस किले का नाम सबसे ज्यादा जिस घटना से जुड़ा है वह है जौहर की वह भयानक रात जिसने पूरे राजपूताना को हिला दिया था। ये कहानी है रानी पद्मावती और चित्तौड़ के जौहर की। 13वीं सदी की बात है। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था एक महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। उसका सपना था पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना। वह एक एक कर राज्यों पर कब्जा करता जा रहा था। उसी समय चित्तौड़ पर शासन करते थे राणा रतन सिंह। वे एक साहसी और स्वाभिमानी राजपूत शासक थे। उनकी रानी थी रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि रानी पद्मावती अपार सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतीक थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंची तो उसके मन में लालच जाग उठा। वह रानी पद्मावती को पाने की जिद में चित्तौड़ पर हमला करने की योजना बनाने लगा। सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ किले को चारों तरफ से घेर लिया। हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी और हथियारों से लैस यह सेना किले के चारों ओर डेरा डाले खड़ी थी। किला पूरी तरह से घेराबंदी में आ चुका था। यह घेराबंदी एक दो दिन की नहीं थी, यह महीनों तक चली। किले के अंदर अनाज और पानी की कमी होने लगी। लोगों के चेहरों पर चिंता दिखाई देने लगी लेकिन राजपूत योद्धाओं के दिल में अब भी वही ज्वाला जल रही थी, सम्मान की ज्वाला। दिन बीतते गए और किले के भीतर हालात कठिन होते चले गए। रसोई घरों में अनाज कम पड़ने लगा। सैनिकों को सीमित भोजन दिया जाने लगा। कई परिवारों ने अपने हिस्से का खाना सैनिकों को दे दिया ताकि वे अंतिम युद्ध के लिए मजबूत रह सके। बच्चे अपने माता पिता की आंखों में डर देखकर खामोश हो जाते थे। रात के सन्नाटे में कभी कभी मंदिरों से प्रार्थनाओं की धीमी आवाज सुनाई देती थी, मानो पूरा किला भगवान से अंतिम चमत्कार की प्रार्थना कर रहा हो। वे जानते थे कि यह सिर्फ जमीन का युद्ध नहीं है, यह उनके सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है। समय बीतता गया, घेराबंदी और कठोर होती गई। अंततः वह समय आ गया जब यह स्पष्ट हो गया कि अब किले को बचाना संभव नहीं है। दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी और संसाधन खत्म होते जा रहे थे। राजपूत परंपरा के अनुसार जब हार निश्चित हो जाती थी तो महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करती थी। जौहर एक ऐसा निर्णय जो सुनने में जितना कठोर लगता है उसका दृश्य उससे कहीं ज्यादा भयावह होता था। लेकिन युद्ध के मैदान में उस समय हालात बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि राणा रतन सिंह और उनके वीर सैनिक दुश्मन का डटकर

0: हथियारों की टंकार और घोड़ों की टापों के बीच राजपूत सेना लगभग जीत के कने पहुंच चुकी थी। तभी अचानक युद्ध की दिशा बदल गई। रणभूमि धूल और रक्त से भर चुकी थी। घोड़े घायल होकर गिर रहे थे, तलवारें ढालों से टकराकर चिंगारियां निकाल रही थी। हर ओर युद्ध का शोर था, जयकारों की आवाज, घायल सैनिकों की कराह और धातु की टकराहट। राजपूत योद्धा केसरिया साफा बांधे अंतिम सांस तक लड़ने का संकल्प लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी युद्ध हो सकता है, लेकिन उनके कदम पीछे हटने के लिए नहीं बने थे। अलाउद्दीन खिलजी के खास सेनापति मलिक काफूर ने पीछे से आकर राणा रतन सिंह पर अचानक हमला कर दिया। यह वार इतना अप्रत्याशित था कि राणा रतन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और युद्ध का पलड़ा अचानक खिलजी की सेना की ओर झुक गया। राजपूत सेना का मनोबल टूटने लगा और अंततः यह युद्ध हार में बदल गया। जब यह दुखद समाचार किले के भीतर पहुंचा तो पूरे महल में सन्नाटा छा गया। रानी पद्मावती और अन्य रानियों को जब यह पता चला कि राणा रतन सिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और अब किला बचना संभव नहीं है, तो उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करने का फैसला लिया। जौहर से पहले की वह रात चित्तौड़ के इतिहास की सबसे खामोश और सबसे भारी रात थी। महल के आंगनों में दीपक जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी में भी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। माताएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर बैठी थी। बहनें अपने भाइयों को अंतिम बार देख रही थी। हर आंख में आंसू थे, लेकिन किसी के चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ एक मौन संकल्प था। मंदिरों में मंत्रोच्चार होने लगा। रानियां और महिलाएं दुल्हन की तरह सजने लगी। लाल चुनरियां, गहने और कंगन, सब कुछ वैसा ही था जैसा शादी के समय होता है, लेकिन इस बार यह सजावट जीवन के उत्सव के लिए नहीं बल्कि सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम विदाई थी। कहा जाता है कि रानी पद्मावती ने सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था, आज हम आग में समाएंगे, लेकिन हमारा स्वाभिमान सदियों तक जिंदा रहेगा।
1: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
2: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
1: बहू को अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
2: दो दिन, दो साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:59 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों इस कार्यक्रम को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, चलते हैं आगे नया कार्यक्रम। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस, और आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: तूने सपना को हाथ लगाया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला।
1: मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
0: समान खींच लूंगा तेरी।
2: मामा जी,
1: अपना ये डंडा संभाल के रखिए, कोई झंडा लहराने के काम आएगा। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं।

तो वक्त हो चुका है 3:32 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम मालूम फरमाई सिटी 9.0।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस, यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
0: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: उस सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
4: परम माननीय दीदी सादर नमस्कार।
5: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
4: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
5: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
4: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद बाकी बिहारी कृपा है। आनंद चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और गीत संगीत से जुड़े रहना चाहिए।
5: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: आए जाते हुए लम्हों, जरा ठहरो जरा ठहरो।
5: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद, नमस्कार।

0: जिन्हें चाहूं जिन्हें पूजूं उन्हें देखूं।
1: हेलो
2: हेलो भाई, नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: फिल्म का नाम है अपने रंग हजार और गाने के बोल है गंगा में डूबा न जमुना में डूबा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मेरी बहन।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अम्बार खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
0: बाकी मन मन मार दिया उसी के सुनने।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ए मेरी नटखटी कॉलेज की लड़की है।
1: ओके।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: दुबे गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: एक कुछ नहीं होना तो लगाना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: बोलो भैया।
1: नाम क्या है सर आपका?
0: बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मुबारक हो सबको समय सुहाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आशिक मीनान मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: बीएस हॉस्टल।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तू आती है सीने में, मैं जब जब सांसें भरता हूँ।
1: ओके सर।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हफ्तीन नाम है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: वो मेरा दिल भी कितना पागल है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

चलो चलो चलो चलो चलो, आंखें बंद करो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस, और अगर गाड़ी चला रहे तो आगे खोलो बंद मत करो। पर एक रिसर्च के मुताबिक 100 लोगों पे ये रिसर्च हुआ और उनसे कहा गया कि आंखें बंद, उसके बाद आंखें बंद करके पट्टी यानी ब्लाइंड फोल्ड करने के बाद उनसे सीधे चलने को कहा गया, तो कोई भी सीधा नहीं चल पाए, थोड़ी देर सीधे चले और उसके बाद वो सर्कल्स यानी गोल गोल घूमने लगे। और उसके बाद पता चला कि जब तक हमारे पास कोई विजुअल पॉइंट ना हो, कहीं फोकस ना हो, हम सीधा नहीं चल सकते। अगली बार अगर दोस्त से आपको शर्त लगाना हो तो उसकी आंखों पे पट्टी बांध देना और बोलना कि चल सीधे चल के दिखा। सारे पैसे आपकी जेब में। फिलहाल अमेजिंग गाने सुनो रेडियो डीएस 89.6 पे।

0: गंगापुर सिटी की धरतर।
1: देखो आपको कोई और बीमारी है या नहीं मुझे पता नहीं, पर आपको एलोडॉक्सोफोबिया है। हाँ हाँ, आपको ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस। और एलोडॉक्सोफोबिया है क्या? ये है फियर ऑफ ओपिनियंस। किसी के ओपिनियन से अगर आपको डर लगता है तो आपको एलोडॉक्सोफोबिया है। और इस चीज को मैं कैसे प्रूफ करूँ? अब मेरा ओपिनियन है कि भैया आने वाले बैक टू बैक जितने भी गाने आप सुनोगे वो अमेजिंग होने वाले। ये तो मैंने उल्टा ही फैक्ट प्रूव कर दिया, क्योंकि भैया इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको एलोडॉक्सोफोबिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये मेरा ओपिनियन नहीं है कि आने वाले गाने बैक टू बैक अमेजिंग होंगे। ये ओपिनियन नहीं है तो फिर क्या है? ये फैक्ट है। सुनते रहो 89.6 रेडियो डीएस।

0: गंगापुर स्थिति की धरकर
1: देखो, गंगापुर सिटी की एक खास बात है, क्या है मैं नहीं बताऊंगा। ट्यून इन कर रखा है आपने 89.6 रेडियो डीएस, और आज का शो भैया यही तक था। अमेजिंग गाने सुने आपने बैक टू बैक, और आने वाले गाने भी अमेजिंग होने वाले। पर जाने से पहले एक शायरी पेश करूं अगर, कि दिन को होता है दिन और रात को आती है रात। वाह वाह वाह, बहुत ही डीप बात। दिन को होता है दिन और रात को आती है रात। शो यही तक था भैया, फिलहाल खत्म करते हैं बात और गाने सुनो अमेजिंग बैक टू बैक ओनली ऑन 89.6 रेडियो डीएस।

0: हमारे सारे दुख का कारण है हमारी खुद की आकांक्षाएं। मैं हूँ आरजे खुशी। कैसे हैं आप सब लोग? नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और हर दिन की तरह आज भी हम अपने आप में कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। मैं भगवत गीता जब पढ़ रही थी तो मैंने एक चीज देखी। अपनी पूरी बात कहने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु। यानी कि मैंने बता दिया क्या सही है क्या गलत है, लेकिन तुम्हें क्या करना है वो तुम ही जानो। मैं अपनी कोई बात तुम पे थोपूंगा नहीं। और सोचिए, यही हम लोग मात खा जाते हैं। हमने अगर किसी को कुछ समझा दिया तो हम चाहते हैं कि वो हमारी बात माने ही माने। यहीं पे अगर हमने सामने वाले को फ्रीडम दे दी, अगर उसको उसके हिसाब से रहने दिया, तो शायद वो हमारी बात जरूर मानेगा। सोच कर देखिए। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियां बहुत सही वक्त है अपने आप को हेल्दी रखने का। मैं हूँ आरजे खुशी। हाँ, थोड़ा बहुत स्ट्रगल तो होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। देखो, गर्मियों में तो हम लोग विटामिन डी नहीं ले सकते, यानी कि सूरज के नीचे नहीं बैठ सकते, लेकिन सर्दियों में हमारे पास में मौका है जिसको हमें गंवाना नहीं है। और अगर आपके घर में थोड़ा सा तिल का तेल है ना, तो अपने घुटनों पे, अपने बालों में, अपने सर पे आप तिल का तेल लगाकर बैठ सकते हैं। इससे जिस भी प्रकार के दर्द आपको होते हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगी कि अगर घुटनों में दर्द रहता है या कोई घर में बड़े बूढ़े हैं या खेलते वक्त कोई इंजरी हो गई है तो भी तिल का तेल आपके बहुत काम आएगा। तो तिल का तेल इस्तेमाल करें और धूप में जरूर बैठें। केवल सर्दियों सर्दियों में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब ठीक हो जाएगी। लौट के आती हूँ थोड़ी देर में। मैं हूँ आरजे खुशी।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: इस कॉल का।
1: जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं चीजों को लेकर। मैं हूँ आरजे खुशी और मुझे ऐसा लगता है जब भी हमको मौका मिले ना छोटे बच्चों के साथ में खेलने का, उसको गंवाना नहीं चाहिए। देखिए, हम सबके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो खुल के जीना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के बोझ तले हम बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं और केवल सोचा विचारी करते करते हम लोग जीना भूल गए हैं। तो जब भी मौका लगे अपने आसपास वाले बच्चों के साथ में जरूर खेलें। ये आपको अंदर से बहुत यंग फील कराएगा, यानी कि आप अपने अंदर के बच्चे से मिल पाएंगे। ये आपको खुशी भी देगा और जब आप मन से खुश होंगे ना तो ये आप बाहर का काम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। आजमा कर देखिए। मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूँ आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डी एस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: समझ रांची है गाना,
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंदना चाहिए गाना,
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना
3: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: बस मजना चाहिए।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो DS
2: पसंद मचना चाहिए।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे, लेकिन, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी की धरती पर
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

पर बरसूं, एक शौक के दामन पर बरसूं। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: पसंद रांची है गाना।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।